बड़ा जुल्मी बादशाह सी। औरंगजेब ने हिंदुस्तान दे लोकां ते इतना जुल्म कीता कि हद मुका दित्ती जुल्म दी। हिंदुआं नूं जबरदस्ती मुसलमान बनाण लगा, मंदिर तोड़ने शुरू कर दिते। इतना जुल्म, धार्मिक रहो रीतां ते पाबंदी लगा दित्ती गई। उस वक्त धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने अपने पिता गुरु तेग बहादुर साहब का बलिदान दे के हिंदू धर्म की रक्षा की थी, और फिर आप अपने हाथ विच कृपान फड़ी और हिंदुस्तान दे बादशाह औरंगजेब नूं एक गल कही, तेरे जुल्म दी अत हो चुकी है, ते हुण मैं इस कृपान दे नाल तेरा जुल्म खत्म करांगा। और सचमुच गुरु साहिबां ने मुगल राज दियां जड़ां पुट के रख दित्तियां। हिंदुस्तान विचों मुगल राज दा हमेशा वास्ते खात्मा कर दिता। इतिहास गवाह है कि गुरु साहिबां दियां कुर्बानियां ने इस जुल्मी राज दा अंत कर दिता।

गुर अंगद की ते कुमारे गुर तीजी पीढ़ी विचारिया क्या हाथ के नाम विचारे।

हमारी जेहबा एक रूप हर के गुण अगम अथाह हम क्यों कर जाए आ हर तुम बड़ अगम अथाह।

निर्मल निर्मल सूचा, निर्मल निर्मल सूचा, सूचो सूचा सूचो सूचा, सूचो सूचा सूचो सूचा, अंत न अंता सदा बेअंता।

0: कसम बेनती कृपा कसम
1: बेनती शरण बेनती बेनती हर कृपा कर
2: निधर हिरे निधर हिरे।

समुंदर दे किनारे एक जोगी राज अपनी अखां बंद करके बैठा है। सामने एदे एक लोहे दी संदूकड़ी पई है।

दो प्रेमी आए इस जोगी राज दे सामने मत्था टेकया। सामने पई संदोखड़ी विच कुछ माया पाई, थोड़ी दूर हट के बैठ गए ने।

साहबा ने उस वक्त ए शब्द उचारिया, काल नाहीं, जोग नाहीं, नाहीं सत का डब, थान सट जग भ्रिष्ट होए डूबता इव जग। कोई जोग नहीं, कोई ज्ञान नहीं, कोई सच नहीं, इस करके ए सारी दुनिया भ्रिष्ट हुंदी जा रही है, ए सारा संसार डूबता जा रहा है। कल मैं राम नाम सार ऐ भाई पखंड छड़ दियो, कलयुग दे विच सिर्फ उस परमेश्वर दे नाम ने सहाय।

साहब जी कहन लगे भाई दुनिया नू कहना कि मैनू तिना लोकां दी सोझी है क्यों झूठ बोलना अखी ता मीटे नाक पकड़े अखा बंद करके समाधि ला के लोकां नू धोखा देना ठगण को संसार सिर्फ लोकां नू ठगण वास्ते जद के तेनु ए पता नहीं तेरी संदूकड़ी किथे है ते गुरु साहब ने कहा जो अपनी बाणी विच बयान कीता है साहब जी उस जोगी राज नु की समझ

पाछे कछु ना सूझे। तेनू अपने पिछे दा ते पता नहीं, संदूकड़ी ता तेरे पिछे पई हुई है। पिछा देखे इस जोगी ने ते सचमुच संदूकड़ी एदे पिछे पई सी। शर्मिंदा हो गए ते गुरु साहब ने कहा, भाई दुनिया नु क्यों धोखा देना है, अपने पिछे पई तेनू संदूकड़ी का पता नहीं ते दुनिया नु कहना है।

कुरान भी पढ़े, कुरान भी पढ़ी, वेदां दा अभ्यास भी कीता, पर बिन नाम हर के मुक्त नहीं कहे नानक दास। उस परमेश्वर दा नाम जदों तक तुसी मन करके नहीं जपोगे भाई तुहानू किसे नू भी मुक्ति नहीं प्राप्त होनी। एक

भगत कबीर सावदा है। एक सेठ बनारस तीर्थ यात्रा वास्ते गया, तीन कुटिया बनिया सन। उन्हां कुटिया दे कोल गया, एक कुटिया दे विचों आवाज आई, नारायण। ए बड़ा खुश होया क्योंकि नारायण परमेश्वर नूं कहा जांदा। दूसरी कुटिया विचों आवाज आई,

मैं ता मथा टेकिया कि ए ता पहुंची हुए संत ने। ते कबीर साहब कहन लगे भाई ए उन्हां दियां गुप्त बोलियां ने जिन्हें क्या नारायण उन्हें तेनू देख लिया ते उची सारी अपने साथियों नू कहा नारायण मतलब के कोई बंदा आया। उदी आवाज सुन के दूसरे ने कहा दामोदर के जेड़ा बंदा आ रहा है एद कोल माया भी चंगी लगती। ते तीसरे ने कहा बिंद्राबन वो कहन लगा कोई नहीं आ जान दियो जंगल विच ले जा के इनू जानू मार के ते लुट लवांगे। ते ओ सेठ कहन लगा कबीर साहब पर इना दा पहरावा एडा सोहना ते काम इन्ने माड़े। ते कबीर साहब जी फिर अपनी बाणी विच इना लोकां बारे इउं बयान कर

जिना जप मालिया जिना ने गलां विच माला पाईया ने लोटे हाथ नी बग ते हथां दे विच चिटे चमकदे हुए लोटे फड़े हुए ने।

साहब कहन लगे एहो जे संत चंगे नहीं लगते जेड़े डाला कहंदे ने टाणियां नूं पेड़ा दरख्त नूं गटकावे खा जाना कि जेड़े टाणियां समेत ही दरख्त नूं खा जांदे ने भाव के माया पिछे इंसान

बसुदा खोद करे दोए चूले के धरती खोद के धरती दे विच चूल्हा बनांदे ने, लकड़ा भी धो के बालदे ने, पर उस तरह सारे मानस खावे जे इन्हां दा वस चले ते जिंदे इंसान नू मार के

ए अपराधी ने मुखों अपरस कहावै पर लोकां दे कोलों अपने आप नूं बड़े वड्डे बड़े उच्चे ते सुच्चे पंडित अखवांदे ने।

अभिमान दे भरे हुए ए आप ते डुबदे ने सगल कुटुंब डुबावे अपना सारा कुटुंब अपना सारा खानदान ए डूब लेंदे ने।

गंगा किनारे बैठे सन। इन्हां दे सामने एक होर संत बैठा सी समाधि लगा के। कोई धनी आदमी आया,

इस पेखी संत दे कोल ए धनी आदमी बैठ गया, गल्ला बातां करदा रहा। बेड़ी आई, ओ धनी सेठ जान लगा अपनी माया वाली वांसली उथे भुल गया। उस पेखी संत ने अपना आसन चुकया, वो माया वाली थैली अपने थले रख के आसन विछाया, चौंकड़ा मार के ते बैठ गया। ते भगत नामदेव जी दूर बैठे सन, उन्होंने देख लिया वो सेठ दूसरे पासे जाके फिर वापस आया। उस पेखी संत नु पुछिया, संत जी मैं तुहाडे कोल बैठा सी, मेरी माया वाली वांस

इस तरह पानी दे विच बगला जाके एक लत दे पार खड़ा हो जांदा है, अखां बंद करके। एदा रंग चिट्टा हुंदा है ते पानी दे विच रहण वालियां छोटियां छोटियां मच्छियां सलाह करदियां ने, चलो भैणा बड़े वड्डे संत महापुरश आए ने जेड़े एक लत दे पार अखां बंद करके सिमरन करदे ने। ओ सारियां मच्छियां ते आंदियां ने दर्शना वास्ते बगले नूं संत समझ के, पर बगला जिहड़ा है एक लत दे पार अखां ते बंद हुंदियां ने, पर कैरी अख करके देखदा रहिंदा है कि केड़ी मच्छी मेरे ज्यादा कोल है। ओ ते मत्था टेकदियां ने संत समझ के, ते उदों ही पता लगदा है जदू बगला मच्छी नूं मुंह विच पा के ते उड्डण दी करदा है। भगत जी कहिंदे ने इह संत वी ओहो जिहे ने उस बगले दी तरह के जदू दा लगदा है इंसान नूं लुट पुट के खा जांदा।

है पाई काहे को कीजे ध्यान जपना जे तुहाडा मन नहीं जुड़दा ते क्यों समाधियां ला ला के बहंदे हो।

के रंग बड़ा सोहना पर खांदा की ये कीड़े ते मकौड़े ऐसे ही ठग दियो बखाने इसी तरह इन्हां संतां नूं समझो जिन्हां ने चिट्टे चिट्टे ते लम्बे लम्बे चोले बनाए हत्थां विच माला फड़ी ते कहंदे ने असीं घर बार छड्डे असीं त्यागी पर इन्हां संतां नूं उस तित्तर दी तरह समझो जिहड़ा सोहना ते बड़ा है पर खांदा कीड़े मकौड़े इसे तरह ए संत चोले ता लम्बे लम्बे पाए ने चिट्टे रंग दे पर अंदरों ए ठग ने उस तित्तर दी तरह

मैं पखंड नहीं करदा। उस परमेश्वर दा नाम जपया उदे नाल मिल गया। ऐ भाई तुसी भी मन करके उदा नाम जपो, तुसी भी इना पखंडा

सदा ही पवित्र है। और साडा विहार ये पवित्र होना चाहिए। विहार निर्मल होना चाहिए, परमार्थ का सदा ही निर्मल। जिसका विहार पवित्र है, विहार सच्चा से सच्चा हो गया, उसका जीवन विहार हो रहा है, दिखावा हो रहा है, वो फिर असली जीवन में बनावटी जीवन। तो शुभ कर्मों की विशेषता है सबसे ज्यादा। शुभ कर्मों वाली दुनिया में कामयाबी, दुनिया भी सत्कार कर दी है जिसे कोई शुभ कर्म। तो अजकल भी दर्शन असा कलयुग जीवों के वास्ते अकाल पुरख दे के अरदास कर रहे हम, दे शिवा वर मोए के है। ये भी कहते हैं कि कलयुग का सतगुरु जी ने शिवजी महाराज की अरदास की। शिव नाम जो है वो अकाल पुरख जिन्हों लोग शिवजी कहते हैं, असली उसका नाम महादेव। सतगुरु जी ने आप फरमाया है, महादेव को कहत सदा शिव, निरंकार का कीनत न भेद। महादेव नु लोग शिव कहते, वो इस वास्ते जेड़ा सिमरन करने वाला हो, रब की बंदगी करने वाला, लोग कहते भई ये तो रब रूप ही, क्यों रब नाल जुड़े। इसे तरह महादेव नु शिव जी किया जाता है, पर असल में शिव नाम अकाल पुरख। उस अकाल पुरख के अगे कलगी सैर दशमेश पिता जी ने अरदास की, वर मंगिया, दे शिवा वर मुहे के है, कर्मन से कम शुभ कर्मा की दात साडे वास्ते। जिन्होंने शुभ कर्मा की दात प्राप्त कर ली, उन्होंने गुरु दिया मेहर, उन्होंने दुनिया जय जयकार। अज मेरे कलगीधर सच्चे पातशाह जी साहबजादे बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह, जिन्हां नूं फतेह हासिल होई, धर्म की तज खड़ी कर दी। आखो श्री वाह, धर्म का बोल सदा वास्ते चढ़दियां कलां च फतेह प्राप्त। नासवंत पदार्थां नाल प्यार नहीं किया, अमर वस्तु जो सी धर्म उसनों अपनाए, जिदे कोल धर्म है उहदे कोल सब कुछ। धर्म सब को वड्डी दात, जिदे कोल धर्म है भाई उसका जीवन सदा वास्ते सफल। धर्म धर्म नाल प्यार की, इस नाशवंत शरीर नु कुर्बान कर समझिया, इसने तो बिन सुना, इसने तो एक दिन बिन सी जाना है। तो धर्म संगीत की, धर्म नाल प्यार किया, शुभ गुणा नु ग्रहण किया, जो कलगी दर्श के पातशाह जी ने मंग मंगी है। फिर बाबा जोरावर सिंह से बाबा फतेह, किस तरह शुभ गुणा नु ग्रहण कर दे। सब तो वड्डा शुभ गुण, सब तो वड्डा कर्म, हजूर प्रमाण सगल धर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल, हरि दे नाम नाल प्यार की, सिमरन नाल प्यार की, धर्म नु उच्चा ते सुचा रखे। तो आओ प्यारी साथ करो, अज उन्हां महान पवित्र हस्तियां, महान व्यक्तियों की याद जुड़े। आओ

निरंकार बन गया है। हे निरंकार, मेरा खालसा सदा वास्ते कर दिया कला कर, मौत नू वेख के डरे नहीं, निडर हो।

सुत अखर किने राम नाम एक आखर किनका एक जिस जीव सावे ताकि महिमा गनी न आवे कांखी एक दर्श तुहारो नानक उन संग मोहे उतारो सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना के मन विश्राम रहो प्रभ कह सिमरन गर्भ न बसे प्रभ कह सिमरन दुख जम न सह प्रभ कह सिमरन काल पर हरे प्रभ कह सिमरन दुश्मन टरे प्रभ सिमरत कछ बिघ्न न लागे प्रभ कह सिमरन अनदिन जागे प्रभ कह सिमरन पौ न व्यापे प्रभ कह सिमरन दुख न संतापे प्रभ का सिमरन साध के संग सर्व निदान नानक हर रंग प्रभ कह सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ निद प्रभ कह सिमरन ज्ञान ध्यान तत बुद्ध प्रभ कह सिमरन जप तप पूजा प्रभ कह सिमरन बिन सह दूजा प्रभ कह सिमरन तीर्थ स्नानी प्रभ कह सिमरन दरगह मानी प्रभ कह सिमरन होए सो पला प्रभ कह सिमरन सो फल फला से सिमरे जिने आप सिमराए नानक ताके लागो पाए प्रभ का सिमरन सब ते ऊंचा प्रभ कह सिमरन उदरे मूचा प्रभ कह सिमरन तृष्णा बूझे प्रभ कह सिमरन सब किच सूझे प्रभ कह सिमरन नाही जम त्रासा प्रभ कह सिमरन पूर्ण आसा प्रभ कह सिमरन मन की मल जाए अमृत नाम रिद माहे समाए प्रभ जी बसे साध की रसना नानक जन का दासन दसना प्रभ को सिमरे से तनवंते प्रभ को सिमरे से पतवंते प्रभ को सिमरे से जन परवान प्रभ को सिमरे से पुरख प्रधान प्रभ को सिमरे से बेमोहताजे प्रभ को सिमरे से सर्व के राजे प्रभ को सिमरे से सुखवासी प्रभ को सिमरे सदा अविनाशी सिमरन ते लागे जिने आप दयाला नानक जन की मंगे रवाला प्रभ को सिमरे से परिउपकारी प्रभ को सिमरे तिन सद बलिहारी प्रभ को सिमरे से मुख सुहावे प्रभ को सिमरे तिन सुख बिहावे प्रभ को सिमरे तिन आत्म जीता प्रभ को सिमरे तिन निर्मल रीता प्रभ को सिमरे तिन आनंद कनेरे प्रभ को सिमरे बसे हर नेरे संत कृपा ते अनदिन जाग नानक सिमरन पूरे भाग प्रभ कह सिमरन कारज पूरे प्रभ कह सिमरन कबू न चूरे प्रभ कह सिमरन हर गुण बानी प्रभ कह सिमरन सहज समानी प्रभ कह सिमरन ने चले आसन प्रभ कह सिमरन कमल विगासन प्रभ कह सिमरन अनंत चुनकार सुख प्रभ सिमरन का अंत न पार सिमरे से जन जिन को प्रभ मेया नानक तिन जन सरनी पिया हर सिमरन कर भगत प्रगटाए हर सिमरन लग बेर उपाए हर सिमरन पय सिद्ध जति दाते हर सिमरन नीच चौकुंट जाते हर सिमरन तारी सब तरना सिमर सिमर हर कारण करना।

मैं ओदा पुत्र ही नहीं। पोंगड़ा पुत्र नु कहे, ऐ मां तू कहनी नाम ना जाप, जा मैं तेरा पुत्र ही नहीं ते ना तू मेरी मां है। ए पिंड ए शरीर खत्म हो जाए।

तू हसदा खेडदा नहीं, बड़ा उदास रहना। जेड़ा नाम तेनू हसन खेडन नहीं देंदा, बेटा तू उस नाम नू वसार क्यों नहीं देंदा। तां तां गुरु नानक साहब दी अखां विच जल भर आया ते कहन लगे, मां आखा जीवा विसरे मर जा, आखने औखा साचा ना। ऐ मां जे मैं नाम जपना वा ता जीना, जे नाम नहीं ते फिर नानक भी नहीं। आखा जीवा

मैं परमेश्वर दे कोल नू विछड़ के आए। तेरे कोल कोई एहो जी कुड़ी है जिड़ी मैं खावा ते परमेश्वर दे नाल मेरा मेल हो जाए। दुख विछोड़ा एक दुख भूख, एक मैनू भुख दा दुख है, मैनू घड़ी मुड़ी भुख लगती है। कादी साची नाम की लागे भूख। तेरे कोल कोई एहो जी कुड़ी है जिड़ी मैं खावा ते ए मेरी नाम दी भुख मिट जावे।

तेरे कोल कोई एहो जी पुड़ी है जेड़ी मैं खावा ते मेरे जमा दा ए जड़ा डर है दुख ए दूर हो जाए। एक दुख सकत

वैद ने हाथ जोड़ ले कहिंदा ऐ नानक मैं ता तेनू कुछ और समझिया सी पर तू ता आप रब निकले जेड़े दुख तू दसे ने इना दुखां दी दवाई मेरे कोल किथे ऐ नानक पातशाह मेरी ते कृपा कर मेरे मन नू बड़े रोग लगे ने मेरे मन दे रोग दूर कर। भाई संतोख सिंह जी लिखते हैं अब मुझ परे करना करिए मन के रोग सगल पर हरिए ऐ पातशाह मेरे ते कृपा कर जेड़े मेरे मन दे रोग ने इन्हां नू दूर कर।

मैं अनजान हाँ, मैनू तैरना नहीं आंदा। तू कृपा करके जरा बांह तां फड़ा, मैं पार लंघ जावां। जिन्हां जिन्हां ने तेरी भगती कीती, जिन्हां जिन्हां ने तेरी आराधना कीती, जिन्हां जिन्हां ने तैनू ध्याया, तू मनुखां तू देवते।

भाई साहब ने अगली गल बड़ी कमाल दी कही है। कहंदे ने हार चले जेड़े भगतां नाल ईरखा करदे ने, भगतां नाल द्वैत करदे ने। भाई साहब कहंदे ने मालिक उन्हां दा